0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय नान தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कम्बस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1,200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण

में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गृह और घर से संबंधित सभी तानों बानों को लेकर हम हाजिर हैं। हमारी प्यारी महिलाओं यानी कि ग्रामीण महिलाओं और सखियों पर आधारित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ रेनू तवर और मेरे साथ मेरी सहभागी
1: यमुना गर्ग।
0: सभी बहनों को हमारा
1: राम राम।
0: तो यमुना बहन, कहते हैं आजादी सबको पसंद है, चाहे वो आज का युग हो या पुराना युग। आजादी तो आजादी होती है, गुलामी किसको पसंद? किसी को भी नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: और आज का दिन बहुत ही खास है। आज है 10 मई, और 10 मई पर एक हमारा जो भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का दिवस यानी कि 1857 का जो प्रथम हमारा स्वतंत्रता दिवस हम आज का मनाते हैं। बहुत गुलामी में जिए, लेकिन कुछ कहते हैं ना, हमारे जो वीर थे, जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने हमें आज आजादी दी, उनको हम शत-शत नमन करते हैं।
1: कुल मिला के कहें तो गुलामी की जो जंजीरें थी उसे तोड़ने के लिए हमारे वीर जो क्रांतिकारियों ने एकजुट होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शंखनाद किया था, वह दिन था आज का, 10 मई 1857। इसी दिन मेरठ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई और मंगल पांडे से लेकर झांसी की रानी तक वीरता का परिचय दिया और तब तक लड़ी जब तक शरीर में श्वास रहा। इसीलिए बोल कहा गया, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: बिल्कुल। और सिपाहियों को कहते ना, विशेष रूप से पशुओं की चर्बी लगे हुए कारतूस दिए गए थे। तो और ब्रिटिश अधिकारियों के आर्थिक शोषण और अत्याचारों ने देश में इस तरह से असंतोष फैला दिया था, तो इसी वजह से यहाँ पर कहते ना क्रांति शुरू हो गई, और ये क्रांति इतनी अच्छी हुई कि आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं।
1: बिल्कुल। और नमन करते हैं अपने उन वीर सपूतों को कि जिन्होंने हमें आजादी दिलाई और जो आज खुले सांस हम ले रहे हैं और खुले वतन में हम घूम रहे हैं।
0: बिल्कुल। और यमुना, एक बात और है, 1857 की क्रांति के जो जनक थे वो मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर को उनको श्रेय दिया जाता है। इन्हीं की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ जनता और सैनिकों को एकजुट करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी,
1: बिल्कुल
0: वो बस कहते हैं ना, उनको नमन है हमारा।
1: सभी को नमन करते हैं और इस गीत के माध्यम से अपनी भारत माता को हम प्रणाम करते हैं।
0: जी

0: शब्द की हम बात करते हैं रेनू, और आज जो खास दिन है माँ के लिए, मातृ दिवस की हम बात कर लें और मदर्स डे हर कोई मना रहा है। माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें इस पूरी सृष्टि को अपने अंदर समा लेने की क्षमता है। यह एक शब्द ही नहीं है, अगर देखा जा रही तो यह संबंधों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें यह भावनाओं का भावसागर है और यह संस्कारों का व्यापक कोष है और यह प्रेम और स्नेह की बैतरणी है जिसके जरिए बच्चे फलते फूलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल, और यमुना जी इस पर मैंने ना एक कविता भी लिखी है।
0: बिल्कुल,
1: और मैं चाहूंगी मेरे श्रोता सुने और थोड़ी तारीफ भी कर दें।
0: हम भी कर देंगे आपकी तारीफ।
1: बिल्कुल, हर बात पर अंकुश लगाती हो तुम, ये बेटी कह रही है, हर बात पर अंकुश लगाती हो तुम, घड़ी घड़ी टोकना डांटती फटकारती हो तुम, कब आओगी क्या खाओगी पूछ पूछ कर करती सबको परेशान हो तुम, ना कोई आए समय पर घर तो दरवाजे पर टकटकी लगाए रहा ताकती हो तुम, सीने में छिपे सबके दर्द को बिना कहे ही आंखों से भाप जाती हो तुम, अपनी हर खुशी का हिस्सा अपने बच्चों में बराबर बांट जाती हो तुम। तुम थकी हो, तुम आज रोई हो, तुम परेशान हो, ये किसी ने ना जाना है, पर तुम घर परिवार के डूबते तिनके का सहारा हो, ये मैंने माना है। तेरा टोकना रोकना इसके पीछे छिपे प्यार ममता को ना समझ पाई मैं, कितनी नादान थी तेरी उस डांट में अपनापन ना कदर कर पाई मैं, माँ तूने हर कदमों में चलना सिखाया मुझे, घर परिवार क्या होता है इसका महत्व बताया मुझे, आज हर माँ को हमारा सलाम।
0: सलाम है, और माँ की अगर हम बात कर रहे हैं रेनू, तो माँ सिर्फ एक जन्म देने वाली नहीं होती है।
1: बिल्कुल,
0: माँ

0: सबसे अच्छी मित्र भी होती है। कहते माँ जैसा दोस्त हो तो फिर क्या बात है, और सबसे पहली गुरु भी होती है। किसी भी बच्चे को अगर देखा जाए तो 6 साल की उम्र तक जो उसका 85% जो होता है वो ज्ञान वो अर्जित हो जाता है, और खास करके किससे होता है, माँ के द्वारा होता है, अधिकांशता माँ ही देती है। तो गुरु नामेव सर्वशाम माता गुरुत्र स्मृता, अर्थात सभी गुरुओं से माता सर्वश्रेष्ठ गुरु है। माता रूपी इस गुरु की महिमा यह भी है कि आप गोविंद भी दिखाती हैं और दूसरों के अंदर बसी मातृभाव से साक्षात्कार भी कराती हैं। ऐसे उदाहरण कई जगह आप आसानी से देख सकती हो।
1: बिल्कुल, और हर बच्चे से हम यही कहेंगे कि हर वो रूप जो कहते हैं माँ में सब कुछ बसा है, माँ जो सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो माँ के ज्ञान को सराखों पर रखें, कभी उनकी बात का बुरा ना माने, वो जो भी कहती है ना आपके भले के लिए ही कहेंगी।
0: बिल्कुल, और भले के लिए कहेंगी तभी तो हम माँ को, जैसे आपने सलाम की बात की
1: जी,
0: तो माँ के प्रति हमारा भाव भी ऐसा सद्भावपूर्ण बना रहे, और जब वृद्धावस्था आए तो ये ख्याल रखें कि उन्होंने उंगली पकड़ के हमें चलाना सिखाया। तो आज अगर उन्हें जरूरत पड़ रही है हमारी उंगलियों की तो हम जरूर उनका साथ दें। और कभी भी सच कहें रेनू तो वृद्धा आश्रम में ना भेज करके अगर थोड़ा कष्ट भी आपको हो रहा है तो अपने साथ ही रखिए और उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिए।
1: और एक बात और, समय निकालें क्योंकि
0: उनसे
1: बातें करें। आप नहीं जानते कि इस उम्र में जब वो आपका सच्चा साथ चाहती है ना तो हम नहीं देते। तो बस आपसे यही मैं आपसे विनती करूंगी कि उनको थोड़ा सा समय दें, उनके चेहरे पर देखना प्यारी सी मुस्कान आपके 5 मिनट के समय में ही दे देगी।
0: और बिल्कुल, और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा फलेगा।
1: तो चलिए ये सुनते हैं प्यारा सा नगमा।

0: यमुना जी, हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं, अब छोटा सा जीवन लगता है, लेकिन लगता है कि सारे काम कर डालें, है ना, ये भी कर ले वो भी कर ले। तो अब हम महिलाओं में तो इतने गुण होते हैं कि क्या ही कहें, शुरुआत दिन से करती हैं और शाम तक वो लगी रहती हैं और इतनी मेहनत करती हैं, कहते हैं इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, लेकिन सब में सब कुछ होता है भाई। अब पेंटिंग की बात करें तो फैब्रिक में पेंटिंग कैसे करते हैं?
1: आज मैंने देखा जो कपड़े पहन के आई हो, तो दुपट्टे में फैब्रिक पेंटिंग हुआ है।
0: बिल्कुल, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये भी तो किसी ने किया ही होगा।
1: हाँ।
0: और टेक्सटाइल डिजाइन हो गया या फैब्रिक पेंटिंग में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसी पर हम लेकर आए हैं बातचीत। तो बातचीत है फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ऋचा प्रकाश, सहायक आचार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से,
1: और
0: इस पे बात कर रही हैं
1: आपकी सखी,
0: हाँ आप ही, यानी कि यमुना देवी।
1: चलिए सुनते हैं।

0: आपकी बातचीत हम जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले ना हम एक नगमा सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।
2: ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं।
1: बिल्कुल, हम सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात करते हैं और सड़क सुरक्षा सप्ताह इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। और खास करके हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है, खास करके सड़क की जो दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए प्रयास किया जाता है कि ऐसा कुछ ना हो आपके जीवन में जो जीवन संकट में बन जाए, तो ऐसी कोशिश होती है। और खास करके हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर जो दो वर्ष में इसी माह में मई माह में विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, वो भी 8 से 12 मई तक। और इसे हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यातायात के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना होता है, इसका उद्देश्य होता है।
0: बिल्कुल, उसका उद्देश्य है जीवन है अनमोल, सुरक्षा है जरूरी। हम सब हैं सड़क सुरक्षा नायक, तो हमें सुरक्षा पर ध्यान देना है, हमें रक्षक बनना है, तेज गति पर लगाम लगाएं और जिम्मेदार नागरिक बने। सुरक्षित सड़कें और सुरक्षा भविष्य, सुखद भविष्य तभी बनेगा जब हम पैदल चलें। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैदल चलने वाले और साइकिल चालकों के लिए सड़कों पर सुरक्षित बनना हमारा सामूहिक, कहते हैं ना, दायित्व है। और नियमों का सारा पालन करना चाहिए क्योंकि देखिए जीवन बहुत ही छोटा है, अगर हम इस तरह से अपने जीवन को खराब करेंगे तो ये छोटी छोटी नियमों का पालन अगर हम करें, ट्रैफिक रूल्स निभाएं तो कितना अच्छा रहे। एक अच्छे सभ्य नागरिक बनना बेहद जरूरी है। मोबाइल का उपयोग ना करें, छोटी सावधानी बड़ी दुर्घटना को टाल सकती है। तो इसी पर हम क्यों ना एक नगमा सुनें।
1: बिल्कुल, और ये बताइए भाई जरा देख के चलो।
0: हाँ

0: भाई हम जैसे कि बातचीत की बात कर रहे हैं तो आज हम बातचीत लेकर आए हैं फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र रोजगार की संभावनाएं विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा प्रकाश सहायक आचार्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली से हैं और इनसे बातचीत कर रही हैं जो आज हमारे सहभागी हमारे साथ यमुना देवी।
1: बिल्कुल, हुनर तो हर किसी में किसी न किसी चीज का होता ही है। यदि समय रहते उस हुनर को पहचान लें तो बेहतर स्वरोजगार का अवसर मिल सकता है और आर्थिक रूप से मजबूती भी मिल सकती है। हुनर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दौर में हाथ से बने और यूनिक डिजाइन वाले कपड़ों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की क्या संभावनाएं हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर ऋचा प्रकाश, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में सहायक आचार्य के तौर पर कार्यरत हैं और फैब्रिक पेंटिंग टेक्सटाइल

0: डिजाइन के बारे में विशेष ज्ञान रखती हैं। आपका हमारी कार्यक्रम में स्वागत है ऋचा जी।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले इस क्षेत्र से जुड़ने की अपनी जो यात्रा है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: धन्यवाद और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। मैं डॉक्टर ऋचा प्रकाश, मैं सहायक आचार्य हूँ इग्नू में और मैं टेक्सटाइल की प्रोफेसर हूँ
0: जी।
1: मेरा जो बचपन में जब मैं मेरी मम्मी को सिलाई मशीन पे काम करते हुए देखती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो बचपन से ही मुझे खाना बनाने और सिलाई करने का बड़ा शौक था तो मैं उनकी मशीन लेके बैठ जाती थी और कुछ न कुछ टेढ़ा मेढ़ा सिलती रहती थी। वहां से मेरा इस क्षेत्र में जो हुनर है वो मुझे समझ में आया कि शायद मेरा इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, तो बड़े होके फिर मैंने होम साइंस में एडमिशन लिया। तो बैचलर डिग्री होती है होम साइंस में, गृह विज्ञान
0: जी,
1: और उसमें पांच अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं, मतलब पांच अलग अलग क्षेत्र होते हैं जिसमें कि हम पढ़ाई कर सकते हैं। उसमें से एक है कपड़ा और वस्त्र विज्ञान का, जिसे कि हम फैब्रिक एंड अपैरल साइंस भी बोलते हैं
0: जी।
1: और वहीं से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ और फिर मैंने बीएससी किया, मास्टर्स किया, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की और मैं पिछले करीब करीब 9.5-10 साल से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रही हूँ
0: जी। तो सबसे पहला प्रश्न, फैब्रिक पेंटिंग या टेक्सटाइल डिजाइन क्या होता है और इसे आमजन की हम बात करें तो जो हमारे श्रोता है तो वो कैसे समझेंगे कि क्या है?
1: देखिए सबसे पहले ना हम जब कपड़े की बात करते हैं तो सभी को लगता है कि कपड़ा मतलब हम जो पहन रहे हैं वो है कपड़ा, जबकि जो फैब्रिक एंड अपैरल साइंस का जो क्षेत्र है ये तीन बड़े चीजों में डिवाइडेड है
0: जी।
1: पहला जिसे कि हम टेक्सटाइल कहते हैं, जहां पे धागे, रेशे, इन सब का जो साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसके बारे में हम जानते हैं
0: जी।
1: जब थान में कपड़ा बन चुका होता है उसके बाद जो थान वाला कपड़ा होता है उसे हम फैब्रिक बोलते हैं, तो वो खुला कपड़ा होता है, उस पर सिलाई नहीं हुई होती है, किसी तरह की फिनिशिंग नहीं दिया गया होता है, तो वो फैब्रिक हो गया। और जो अपैरल होता है, जो कि हम बहुत ही आसान शब्दों में हम उसे कपड़ा बोल देते हैं, बट किसी कॉमन इंसान के लिए कपड़ा कुछ भी हो सकता है। तो जब एक कपड़ा कटता है और उसके ऊपर सिलाई मारी जाती है वो एक पहनने वाले वस्त्र में चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसे हम फिर क्लोदिंग या अपैरल या वस्त्र बोलते हैं
0: जी।
1: तो ये तीन फील्ड्स हैं जिसे कि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने बात किया फैब्रिक पेंटिंग की
0: जी।
1: तो फैब्रिक पेंटिंग वो हुआ कि कपड़ा जब थान के स्टेज में होता है या उसे हम कट करके काट के सिलाई कर चुके होते हैं
0: जी।
1: तो उसे हम और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, हम उसे बुनाई से सुंदर बना सकते हैं, कढ़ाई से बना सकते हैं, अलग अलग तरह की सिलाई करके बना सकते हैं और उनमें से एक तरीका या टेक्निक है जिसे कि हम पेंटिंग भी कहते हैं। तो अलग अलग तरह के पेंट्स आते हैं। पहली तो बात, पहले मुझे याद है पुराने जमाने में जब हम बचपन में थे तो हमारे पास वो पोस्टर कलर या वाटर कलर होते, लेकिन वो कपड़े पे नहीं चढ़ते हैं, वो एक बार की धुलाई में निकल जाएंगे। आज आप देखिए इंग्लिश में उसे पिगमेंट कलर्स बोलते हैं या हम डाई भी बोलते हैं, हिंदी में सब रंग ही होता है बट इंग्लिश में थोड़े से डिविजन्स अलग हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक तरह का गोंद होता है जो कि इसे कपड़े से फाइबर के एकदम अंदर के लेवल तक, एटॉमिक लेवल तक वो घुसता है और उसे कपड़े से बांध के रखता है। तो आप उसके ऊपर जब एक बार वो रंग सूख जाए तो आप उसे कितनी भी बार धो दें वो निकलता नहीं है। तो इसे हम फैब्रिक पेंटिंग कहते हैं और इससे बहुत तरह के टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी रंग लेके और कोई डिजाइन एक फूल बना के उसे चित्र बना के आपने कलर कर दिया, भर दिया तो वो फैब्रिक पेंटिंग हो गई। नहीं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। एक चीज होती है मॉर्डेंट, जैसे कि एलम होता है जिसे हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं। आप अगर कोई भी रंग वाले कपड़े को फिटकरी में डुबा के थोड़ी देर सादे पानी में उबाल देंगे तो वो रंग पक्का हो जाता है, फिर वो रंग निकलता नहीं है। तो वो इंग्लिश में एक तरह का हम उसे मॉर्डेंट बोलते हैं। तो फैब्रिक पेंटिंग के लिए भी ये सारी चीजें कपड़े पे देना और फिर पेंट करना उसे बहुत जरूरी है।
0: फैब्रिक पेंटिंग में अगर आगे बढ़ने की हम बात करें तो इसके लिए कौन कौन सी योग्यता या काबिलियत क्या होनी चाहिए?
1: जी देखिए, अगर आप सिर्फ फैब्रिक पेंटिंग की बात कर रही हैं तो सच तो ये है कि इसमें योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपका हाथ बैठा हुआ है, आप अच्छा आउटलाइन बना सकते हैं, चित्रकारिता कर सकते हैं और उसके अंदर आप कलर भर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अपना एक रोजगार शुरू करना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें एक करियर बनाऊं अपना, तो फिर आपको थोड़ा सा बेसिक एजुकेशन, पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके लिए कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जहां पे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए फैब्रिक

आपको थोड़ा सा नॉलेज कपड़े का होना चाहिए और थोड़ा सा रंगों का। तो बैचलर्स डिग्री है, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा है। अब जैसे सर्टिफिकेट होता है एक साल का हो गया है अब तो, या डिप्लोमा कोर्सेज दो साल के हो गए हैं, बैचलर डिग्री तीन से चार साल की है, और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो एक या दो साल लगता है। डिपेंड करता है कि आपने पहले कौन सी डिग्री कितने टाइम की हुई है। ग्रामीण महिलाओं के लिए मैं ये

0: ग्रामीण महिलाओं के लिए मैं ये कहूंगी कि अगर आप ड्राइंग में अच्छी हैं, कलरिंग में अच्छी हैं, इस फील्ड में जा सकती हैं, फैब्रिक पेंटिंग कर सकती हैं। आपके घर में कपड़ा है, आपको पता है कि सूती कपड़ा कौन सा है, आपको पता है रेशम का क्या है, आपको पता है कि सिंथेटिक कौन सा है, आप बस इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस आजकल मार्केट में कपड़े के ऊपर चढ़ने वाले बहुत कलर्स अवेलेबल हैं जो कि आसानी से मिल जाते हैं, और मार्केट में फेविक्रिल कलर्स अवेलेबल हो तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक गोंद जैसा सब्सटेंस होता है, तो ये जब आप कपड़े पे अप्लाई करते हैं तो वो निकलता नहीं है। तो इस तरह के आप कलर्स ले आइए, थोड़े से आप ब्रश ले लीजिए कलर करने के लिए, और फिर उसके बाद आप घर पे बैठे ही आप फैब्रिक पेंटिंग कर सकते हैं।
1: शुरुआती दौर के समय में कितनी लागत से इसे शुरू की जा सकती है, जैसे बजट की हम बात करें
0: जी,
1: कितना लग सकता है शुरुआती दौर में?
0: देखिए, अगर आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप ये चीज बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं और इसे बाजार में बेचना चाहते हैं, तो आप एक दो कपड़े से तो शुरुआत नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें बल्क में चीजें चाहिए होती हैं, तो आप 50 या 100 पीसेस तो टारगेट करेंगे ही। तो आपके पास जो सबसे कम लागत में आप ये काम शुरू कर सकते हैं वो 10,000 के आसपास आप कर सकते हैं। कुछ नहीं, आप सूती साड़ियां एक रंग की या अलग अलग रंगों की, बिल्कुल प्लेन सूती साड़ियां बॉर्डर वाली आप खरीद लीजिए, और उसके ऊपर आप डिजाइन बनाइए और उसे अलग अलग रंगों से भर दीजिए कलर करके, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप 10,000 की लागत में अपने रंगों को और ब्रशेस को और में कपड़ा, ये सारी चीजें आपको इतने में आ जाएगा, और 50 पीस तो आराम से आपका निकल जाएगा।
1: आज सोशल मीडिया का देख लीजिए जमाना है, और ऑनलाइन के हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे में ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है किस तरीके से सहायता कर सकता है इसमें?
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तो ऑनलाइन इतना जी, मतलब स्मार्टफोन हाथ में जरूर होता है। अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप जाइए तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बनाइए और उसे वहां पे फोटो खींच के आप एक प्रोफाइल बना लीजिए, बिजनेस प्रोफाइल, और आप उस पे अपने फोटोज अपलोड करते रहिए, और जितना हो सके आप उसे फैलाने की कोशिश करिए, शेयर करिए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं लोगों की नजर पड़ती है, और क्योंकि हाथ का काम आजकल बहुत मैं कहूंगी एक्सपेंसिव महंगा होता जा रहा है, क्योंकि मशीन ने ले लिया है हाथ के काम को, ओवरकम कर लिया है, तो मशीन का काम तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो हैंडलूम का होता है, जैसे हमारे जो कारीगर्स हैं जो हाथ से बुनाई कर रहे हैं या यू नो कढ़ाई कर रहे हैं या जो फैब्रिक पेंटिंग हो रही है,
1: उसकी बात ही अलग,
0: उसकी बात ही अलग है, उसकी अलग लुक आता है और उसकी अहमियत भी बहुत अलग है। तो मैं तो कहूंगी कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा और एक बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म बनेगा आप लोगों के लिए।
1: बिल्कुल, तो जैसे आपने भी कोर्स की बात, कौन सा कोर्स कर सकती हैं?
0: जी देखिए, फैब्रिक पेंटिंग के लिए अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्सटाइल, फैशन डिजाइनिंग, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस, इस तरह के अलग अलग नॉमेनक्लेचर्स, मतलब अलग अलग नाम से अलग अलग विश्वविद्यालयों में कोर्सेज चल रहे हैं। टेक्सटाइल्स एंड क्लोदिंग के नाम से चल रहा है, क्लोदिंग एंड अपैरल के नाम से है, क्लोदिंग एंड टेक्सटाइल्स के नाम से है, फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के नाम से है, और फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी से भी है। और क्योंकि फैब्रिक पेंटिंग एक बहुत बेसिक चीज है तो ये सभी कोर्सेज में सिखाया जाता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि डिस्टेंस एजुकेशन के भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कि फेस टू फेस, मतलब सामने बैठ के टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन घर बैठे आपके घर पे बुक्स पहुंच जाएंगी, तो इस तरह के काफी सारे कोर्सेज हैं।
1: तो सरकार द्वारा क्या कुछ सहायता दी जा रही है इस क्षेत्र को लेकर के?
0: देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स हैं जो इसमें चल रहे हैं, जो कि ग्रामीण महिलाओं को ही टारगेट करते हैं, जैसे कि एक है सिल्क सामग्री एंड वुल डेवलपमेंट। तो ये सिल्क और ऊन का काम अगर आप करना चाहें तो आप इसमें आपको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक रॉ मटेरियल्स, और इसमें आप अपना काम कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जैसे समर्थ की एक स्कीम है जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में ज्यादा है, मतलब फाइबर और यान, धागे, रेशे, ये सब में ज्यादा काम करती है। इसी के साथ साथ और बहुत सारी हैं, जैसे कि एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। प्लस उनका एक चीज, जैसे कि आसाम का एक गांव है जिसे कि स्वालकुची कहा जाता है, वो पूरा का पूरा रेशम के धागों पे काम करता है, वहीं पे वो सिल्क बनाते हैं, वहीं पे उसे रंग किया जाता है, वहीं पे उसकी बुनाई होती है, सब कुछ। तो इस तरह से स्कीम्स तो खैर काफी ज्यादा हैं।
1: बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे संदेश के रूप में?
0: जी, मैं यही कहूंगी कि हमारे जितने भी श्रोता हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, आप सभी को देखिए, फैब्रिक पेंटिंग, टेक्सटाइल, फैशन की जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये एक बहुत ज्यादा फैला हुआ क्षेत्र है, और आप कहीं पे भी किसी भी फील्ड में जाएं, आपको कपड़े की जरूरत तो पड़नी ही है, तो इसका नॉलेज होना, बेसिक भी

0: नॉलेज अगर आपको चाहिए तो ये बहुत अच्छा होगा। प्लस बहुत आसानी से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं रेशे के बारे में तो कुछ जानती ही नहीं, सूती क्या होता है, रेशम क्या होता है, नहीं ऐसा नहीं है। आप थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे और बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि कैसे किस चीज को पहचानना है।
1: डॉक्टर ऋचा प्रकाश जी, जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दिल्ली में सहायक आचार्य के तौर पर कार्यरत हैं, आपने फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हमें जानकारी दी। हमारे श्रोताओं को इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कहते हैं ना, फैब्रिक की जो इम्पोर्टेंस थी वो किस तरह से हम महत्व रखता है जीवन में और हम कैसे रोजगार को बढ़ा सकते हैं, तो इसी पर हमने अभी बातचीत सुनी। फैब्रिक पेंटिंग और टेक्सटाइल डिजाइन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कैसे बढ़ा सकते हैं, जो विशेषज्ञ थे डॉक्टर ऋचा प्रकाश, जो कि सहायक आचार्य थे इग्नू दिल्ली से, और बातचीत कर रहे थे यमुना देवी हमारे सहपाठी।
1: बिल्कुल, और कहते हैं ना कि अगर जीवन जीना है तो थोड़ा सा सकारात्मक होकर के जिए और जो मिलता है उसमें भी कुछ न कुछ ऐसा तलाश करें, अपने हुनर के दम पे कुछ आगे बढ़ें, और जीवन को जीना है तो थोड़ा खुशी खुशी न जी लें।

0: कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ जीवन में करना ही होता है, और खास करके आज हम वीरांगना क्रम की बात करें तो रीनू क्या करने जा रहे हैं वीरांगना क्रम में, आज हम किसको ले रहे हैं?
1: आज आ रहे
0: बात कर रहे हैं
1: आज हम लेकर आए हैं झलकारी बाई को, जो कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की एक निर्भीक महिला योद्धा थी, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्गा दल का नेतृत्व किया। और कहते हैं कि वे रानी की हमशक्ल थी, और झांसी के युद्ध में अंग्रेजों को धोखा देने के लिए उन्होंने रानी के वेश में लड़ते हुए अद्भुत वीरता दिखाई थी।
0: क्या बात है, तो थोड़ी सी बात हम भी बता दी, मुझे याद है थोड़ा सा कि इनका बचपन जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक साधारण जो एक निषाद परिवार होता है उसमें हुआ था, और बचपन में ही माता का देहांत होने के बाद उनके पिता ने उन्हें घुड़सवारी और हथियार चलाने जैसे तलवारबाजी है निशानेबाजी है पहले ऐसा होता था प्रशिक्षित किया जाता था बालिकाओं को भी। और देखा जाए तो झलकारी बाई का चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता था, वे न केवल रानी की सेविका थी बल्कि दुर्गा दल की एक प्रमुख सिपाही भी थी।
1: बिल्कुल, और कहते हैं अंग्रेजों ने झांसी के किले को पूरा घेर लिया था, तब झलकारी बाई ने रानी का वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व किया, जिससे रानी को किले से सुरक्षित बाहर निकालने का मौका मिल सका। तो कहते हैं कहा जाता है ना कि अंत तक अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को वो प्राप्त हुई, और उन्हें झांसी की परछाई और बुलेंदखंड की शान के रूप में याद किया जाता है।
0: बिल्कुल, और यह पंक्ति कहना अनुचित ना होगा कि जाकर रण में ललकारी थी वो तो झांसी की झलकारी थी, और इन पंक्तियों को राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था। तो ऐसे वीर योद्धाओं को हमारी जो सत सत नमन है, और हम यही कहते हैं कि उन

0: अपने कार्यक्रम में हम समय समय पर इस बात की भी जानकारी देते हैं कि योजनाओं के अंतर्गत हम आपको क्या बताने वाले हैं।
1: बिल्कुल, और आज जिस योजना की हम बात कर रहे हैं, जब कन्या पैदा होती है तो बहुत चिंताएं भी पैदा हो जाती है, पता नहीं क्यों

0: ना सोचते हैं कि क्या करें क्या करें, लेकिन इसके लिए सरकार ने हमारे सुकन्या समृद्धि योजना जो एक लघु बचत योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, एक पहल के अंतर्गत बालिका के आर्थिक कल्याण के लिए बनाई गई है। इसमें उचित बजट ब्याज दर होती है, कर लाभ भी मिलता है और 21 वर्ष की परिपक्वता अवधि प्रदान की जाती है, जिससे माता पिता 10 वर्ष से कम आयु की बेटी के लिए प्रति वर्ष सिर्फ 250 रूपये से शुरू कर सकते हैं और 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं,
1: मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रूपये तक कर सकते हैं। और जो 10 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 10 वर्ष के कम आयु की बच्ची की बात, तो जब जन्म लेती है तभी से आप अगर शुरू करवा देते हैं तो उसके बड़े होने तक आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, समय पे मिल जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए जैसे कन्या जन्म ले आप उसका सुकन्या समृद्धि के तहत खाता खुलवा दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चियां हैं वो 2 बच्चियों तक आपको इसका लाभ मिलेगा, मतलब आपकी 2 बेटी तक का हो सकता है सुकन्या समृद्धि का आप लाभ पा सकते हैं, 3री बेटी पर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए अलग से कुछ कर सकते हैं आप व्यवस्था। और दूसरी बात, जैसे आपने ब्याज दर की बात की, तो जो अन्य जगह हम कोई जमा राशि करते हैं तो वहां पे ब्याज उतना ज्यादा नहीं मिलता, पर ये सुकन्या सबसे ज्यादा इसमें देते, खास करके ये बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए है। और ये जो खाता खोलते हैं, खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक इस पैसे को जमा करना होता है। और जो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपको, तो बिटिया का जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र होता है, आधार कार्ड अगर बना है तो उसका आधार कार्ड, नहीं तो जो माता पिता है
0: माता पिता के नाम पर
1: आधार कार्ड, यही इतना लगता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। और इस खाते को अगर आप खुलवाते हैं तो
0: पोस्ट ऑफिस में ये बहुत आसानी से खुल जाता है।
1: जमा करना होगा 15 साल तक, लेकिन जो मेच्योरिटी 21 साल पूरे होने पर या बेटी के 18 साल की आयु के बाद विवाह होने पर मेच्योरिटी पर ये प्राप्त हो सकता है।
0: और देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको।
1: एक बात और है रीनू, मैं ध्यान में आ गया कि जो इनकम टैक्स होता है ना, आयकर की धारा 80C के तहत इसमें जो जमा राशि और टैक्स में छूट भी मिलती है, तो ये धनराशि आप यहाँ जमा करके लाभ पा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और साथ साथ ये भी कहेंगे कि अगर पैसा आपके पास ज्यादा है, पैसा है तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो गुरूर करने की जरूरत नहीं है थोड़ा।
0: और महिलाएं तो हमारी हमेशा पैसे की बचत कर ही लेती हैं,
1: तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसे पे गुरूर भी करने की नहीं करनी चाहिए।
2: 4 पैसे क्या मिले, क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने अब

कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपने बहुमूल्य सुझाव इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता कृषि एवं गृह एकांश कमरा नंबर 610 नया प्रसारण भवन नई दिल्ली 110001।

0: आप हमें ईमेल के जरिए भी जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: आपको ये भी बता दें कि जो हमारा ये कार्यक्रम है गृहलक्ष्मी, इसके अलावा भी हमारा कार्यक्रम शाम को जाता है लोक रंजनी 5:10 से लेकर 5:30 तक, और ग्राम संसार कार्यक्रम 6:30 से 7 तक, और हमारा जो कृषि जगत कार्यक्रम है वो 7:05 से 7:30 तक, इसको भी आप सुन सकते हैं।
0: और इसी के साथ आज हमारा गृहलक्ष्मी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदनलाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को हमारा राम

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूबनगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का

आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अरे जनाब, आपने पुकारा नहीं लेकिन फिर भी हम हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर एक ही फिल्म से। और मैं हूँ आपका आरडी यानी रेडियो दोस्त, एडी यानी अरुणेश द्विवेदी। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो फिल्म है वो है पेइंग गेस्ट, जिसका खूबसूरत सा नगमा आप अभी सुन रहे हैं।

बिल्कुल दोस्तों, आज की फिल्म का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये मूवी बेहद ही जानदार, शानदार और दमदार है। 1957 में बनी पेइंग गेस्ट नाम की इस फिल्म में देवानंद और नूतन ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी, और ये एक तरह से क्लासिकल रोमांटिक के साथ साथ थ्रिलर फिल्म भी है। जी हाँ, और इस फिल्म की कहानी में रमेश, इसका जो करेक्टर प्ले किया है देवानंद साहब ने, और वो एक बेरोजगार वकील हैं जो आर्थिक तंगी के कारण एक घर में बूढ़े व्यक्ति का वेश बना करके पेइंग गेस्ट के रूप में रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट आता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इस खूबसूरत से प्यारे से गाने के बाद जिसको आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने।

तो दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म में अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को, और आज की फिल्म है पेइंग गेस्ट, जो कि 1957 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुबोध मुखर्जी साहब, और जैसा कि इस गाने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस फिल्म में देवानंद और नूतन की मुख्य भूमिकाएं में थी, और साथ ही में शुभा खोटे ने भी बेहतरीन अभिनय किया था। सचिन देव बर्मन, जो कि लोकप्रियता के तौर पर, या यूं कह लें कि उनको जाना जाता है एसडी बर्मन, उनका पूरा नाम है सचिन देव बर्मन साहब, उन्होंने जो साउंड ट्रैक इस फिल्म के लिए जो उन्होंने म्यूजिक बनाया, उसने एक अमिट छाप छोड़ी। और वहीं बात करें अगर गीतों की कि गीतकार कौन है, तो इस फिल्म के गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी साहब हैं। जो इस फिल्म के गाने हैं वो आज भी बेहद पसंद आते हैं हमारे, इस जो भी फिल्मी गाने सुनना पसंद करते हैं हमारे श्रोता, उन सबको इस फिल्म के गाने आज भी बेहद पसंद आते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जो देवानंद का किरदार है, जिसका नाम है रमेश, वो किराया नहीं चुका पाते हैं, इसलिए बार बार किरायेदार के तौर पर वो कभी इस मकान में तो कभी उस मकान में रहते हैं। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं एक बूढ़े आदमी का वेशभूषा धारण कर लेता हूँ, और फिर एक किरायेदार के रूप में वे एक घर में रहने लगते हैं। और उस किरायेदार के रूप में जब वो जिस घर में रहते हैं, तो उस घर का जो मकान मालिक होता है, उनकी बेटी होती है शांति, और शांति का किरदार निभाया है जानी मानी अभिनेत्री नूतन ने। और किस तरह से किरायेदार देवानंद और शांति यानी नूतन के बीच में प्यार हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, इसी को लेकर के इस फिल्म को बनाया गया है, और इस फिल्म में बहुत कुछ आगे भी आता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं इसी फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज में एक और प्यारा सा नगमा।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: एक बार फिर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है 1957 में रिलीज हुई पेइंग गेस्ट, जिसमें देवानंद साहब और नूतन ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। और आज मैं इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं, आपका रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो कहानी कुछ यूं होती है कि जैसा कि मैंने अभी इस गाने से पहले आपको बताया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का वेशभूषा बनाकर देवानंद साहब रहने लगते हैं जिस मकान में, और उस मकान के मालिक की बेटी होती है नूतन, और दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। तो इसके बाद होता यह है कि उसकी जो नूतन है, उसकी सबसे अच्छी जो दोस्त होती है जिसका नाम है चंचल, और इस किरदार को निभाया है शुभा खोटे ने। तो उनकी जो दोस्त है चंचल, वो पैसे के लिए एक प्रसिद्ध बैरिस्टर दयाल से शादी कर लेती है, और उसकी उम्र ज्यादा होती है और वो उसके लगभग पिता की उम्र का होता है। तो शादी के बाद चंचल शांति की पड़ोसी बन जाती है, लेकिन वो अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट थी। इसके बाद शांति और रमेश के प्यार से वो ईर्ष्या करने लगती है, और शांति की बड़ी बहन का अय्याश और बदमाश पति प्रकाश होता है, और वो शांति के पिता को धमकी देता है कि वो उसे पैसे नहीं भेजे तो नहीं तो वो उनके घर आ जाएगा। रमेश घर का किराया दे पाने में असमर्थ होता है, रमेश यानी देवानंद साहब। अब इसके बाद क्या होता है कि जब रमेश शांति के पिता को शांति के द्वारा दिया गया पैसा देता है, तो वो उसे अपने दामाद को मनी ऑर्डर के रूप में भेजने के लिए तैयार हो जाता है, और शांति उसे ऐसा करने से रोकती है और वो कहती है कि वो खुद कर देगी, लेकिन वो सच में ऐसा कुछ नहीं करती है। और फिर ये होता है कि शांति की बड़ी बहन बीमार पड़ जाती है, और शांति अपने देवर को दवा लेने के लिए अपने सोने की चूड़ियां दे देती है, लेकिन प्रकाश उन पैसों को शराब में उड़ा देता है। उधर रमेश की कोई आमदनी नहीं होती है, और चंचल और शांति को नौकरी करने की सलाह देती है। तब शांति एक थिएटर ग्रुप में काम करने लग जाती है, और इसी बीच चंचल और रमेश को बदलने की कोशिश करती है और अपने पति के यहाँ नौकरी दिलवा देती है। और पैसों की तंगी के कारण प्रकाश चंचल का साथ देता है, और रमेश और शांति को अलग करने की साजिश भी रचता है। तो दोस्तों, पेइंग गेस्ट की फिल्म में यहीं से एक सस्पेंस और थ्रिलर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो आपको हमारी आज की जो फिल्म है पेइंग गेस्ट, अगर आप लोगों ने देखा हो तो बताइए आप

फिल्म कैसी लगी थी, और साथ ही में आप हमें ये भी बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हम आपके संदेश को, आपके मैसेजेस को इस गाने के बाद शामिल जरूर करेंगे। बस आप सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, अपने रेडियो दोस्त अरुणीश।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और आज मैं हूं आपके साथ अरुणेश द्विवेदी। और इसी बीच आपके संदेश, आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हमारे ये नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और इन्होंने लिखा है कि माननीय अरुणेश द्विवेदी जी आपको

0: हैप्पी एंड हेल्दी संडे. गुड आफ्टरनून जी, आपको भी गुड आफ्टरनून. और आज आप जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहा है, और ये जो फिल्म है पेइंग गेस्ट, इसके बारे में आपकी शानदार प्रस्तुति है और फिल्म के गाने भी लाजवाब हैं जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और एक और मैसेज आया है पीटीआई संसद मार्ग नई दिल्ली से अनिल मोहन जी का, और इन्होंने कहा है कि आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए आपको बहुत बहुत बधाई. जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को पसंद किया. इसके अलावा एक और मैसेज आया है पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी, तिवांशी, वाणी और आरबी खेड़ा का, और इनके साथ हैं जीवन सिंह, और इन्होंने भी इस कार्यक्रम की तारीफ की है. जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद. और इसके अलावा हमारे एक और नियमित श्रोता हैं देव शंकर, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी और पूजा, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर. इन्होंने किकरी मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से लिखा है, और इनके साथ संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा जी का भी नाम है. और इन्होंने कहा है कि आपकी प्रस्तुति तो सदा ही लाजवाब होती है, और पेइंग गेस्ट की जो आपने कहानी बताई और गीत सुनाए वो बेहद ही अच्छे लग रहे हैं. जी बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसे ही हमारा हौसला अफजाई करते रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए. हमारे इस चैनल आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रेस चैनल को भी सुनते रहिए. और अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको इस फिल्म की कहानी में आखिर में क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद आप बने रहिए हमारे साथ.
1: हो गया इंतजाम.
2: किसका? गुड्डी की फीस का.
1: दिखा.
2: 20,000 का लोन तुरंत.
1: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
2: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर.
1: हो गया इंतजाम.
2: पगार एडवांस में भेजिए.
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
0: तो दोस्तों आज की फिल्म है पेइंग गेस्ट, और हमने जो आपको कहानी बताई, अगर उसके कहानी के आगे की अगर बात करें तो जो चंचल होता है वो प्रकाश के साथ मिलकर दयाल को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है और उसे झील में डुबो देती है. उधर प्रकाश वसीयत और दयाल की हत्या को लेकर चंचल को लगातार ब्लैकमेल करता रहता है, और एक बार शांति को किसी की परछाई चंचल का गला घोंटते हुए दिखाई देती है, और जब वो चंचल के घर पहुंचती है तो देखती है कि प्रकाश चंचल के साथ मारपीट कर रहा है, और उसी दौरान शांति को देखकर प्रकाश उस पर गोली चला देता है. उधर वो दूसरे कमरे में भागती है और प्रकाश से हथियार छीनकर उसे गोली मारने की धमकी देती है, और एक गोली चलती भी है जिसमें प्रकाश मारा जाता है, और आखिर में शांति अपना जुर्म कबूल कर लेती है और प्रकाश की हत्या के आरोप में अदालत में उसको पेश किया जाता है. उसका केस लड़ने के लिए बड़े बड़े वकील मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, लेकिन जो रमेश नाम के वकील साहब हैं यानी अपने देवानंद जी, वे उसके वकील बनते हैं. और अब क्या वे उसको फांसी की सजा से बचा पाते हैं या नहीं, ये तो हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि अगर सारी कहानी हम ही बता देंगे तो फिर आपको अगर कभी मन किया इस फिल्म को देखने का तो आपको सस्पेंस पहले ही मालूम रहेगा, इसलिए पूरी कहानी नहीं बताते हैं. आखिर में क्या होता है आप इस फिल्म को देखिए और फिर बताइएगा. चलते चलते अब इस कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो एक छोटा सा प्यारा सा नगमा गाना आपको

दोस्तों हमें जाना होगा क्योंकि कार्यक्रम का समय जो समाप्त हो रहा है और सबको समय के साथ ही तो चलना चाहिए। तो अब अपने रेडियो दोस्त

यानी आरडी को अनुमति दीजिए और फिर आपसे होगी मुलाकात इसी चैनल में किसी न किसी कार्यक्रम के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल

0: आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्त चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने सवेरे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वरेगंड समारोह में हिस्सा लिया। तमिलनाडु में तमिल कहावेत्री गड़गम के संस्थापक श्री जोगन विजय ने सवेरे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। आसाम के सीनियर बीजेपी नेता डॉ हिमंत बिस्व सरमा पार्टी विधायक दल के एनडीए विधायक दल का नेता चुनिया गया। सिख्या मंत्रालय गर्मियों छुट्टियों दौरान देश भर के सारे स्कूलों में भारतीय भाषा समर कैंप 2026 कराएगा। तीरंदाजी में भारत की औरतों की रिकॉर्ड टीम ने शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप पड़ा 2 में सोने का तमगा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवेरे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वरेगंढ समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग अंतरराष्ट्रीय केंद्र विखे नवे बड़े ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इकट्ठ को संबोधन करते प्रधानमंत्री ने सेवा अध्यात्म से समाजिक तब्दीली उत्साहित करने में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की शलाघा की। उन्होंने चुगिरदे प्रति जिम्मेवारी नौजवानों के शक्तिकरण से अंदरूनी तंदुरुस्ती राही विकसित भारत के निर्माण लिए समूहिक यत्ना का सद्दा भी दिता। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण से तंदुरुस्त नौजवानों की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: बेंगलुरु बारे गल करदे प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु दी प्राप्तियां दी शलाघा की थी।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: आज बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद यात्रा करेंगे। हैदराबाद में करीब 9,400 करोड़ रुपए के कई विकास प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखेंगे ते उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक लांगे ते गोडे बेलूर तो महबूब नगर तक चार मार्गी राष्ट्रीय शाहराह नंबर 160 का नींव पत्थर रखेंगे, जिसकी कुल प्रोजेक्ट लागत 3,175 करोड़ रुपए तो वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि पश्चिम बंगाल, असम ते पुडुचेरी विच भाजपा की जीत उन्होंने सरकार वालों लागू की गई राष्ट्र नीति लिए जनतक हमायत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चोण नतीजे राष्ट्र के रुख दर्शाते हैं जो उन्होंने सरकार के राष्ट्रीय प्रोग्रामों के नतीजे की हमायत करने वाले जनतक संदेशों का संकेत दिते ने। आज बेंगलुरु विच भाजपा वर्करा नूं संबोधन करदे हां प्रधानमंत्री ने एक अजिही सरकार दी जरूरत ते जोर दिता जो काम करती है, जो तेजी नाल चंगा शासन प्रदान करती है ते हल प्रदान करती है ते देश नूं अगे ले जांदी है।
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशन चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: तमिलनाडु में तमिलावेत्री कड़गम टीवीके के संस्थापक श्री जोसफ विजय ने आज सवेरे मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। सहु चुक समारोह सवेरे 10 बजे नेहरू इंडोर स्टेडियम विच होया। राज्य राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने श्री विजय नौदे से सरकारी भेद गुप्त रखने की सहु चुकई। उन्होंने नौ मंत्रियों भी सहु चुकई गई।

0: ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप आदाब। ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनात संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में शंघाई में भारतीय ख्वातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें यौमे तासीस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बैन अल-अक्वामी सेंटर में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खिदमत रूहानियत और समाजी कायापलट के फरोग में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के रोल को सराहा।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: जनाब मोदी ने माहौलियात से मुतालिक जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सियासी निजाम के मुकाबले समाजी शमूलियत ज्यादा बाअसर है और मुल्क की तामीर के लिए लाजमी है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में बीजेपी की कामयाबी उनकी सरकार की जानिब से नाफिज की गई कौमी पॉलिसी के लिए अवाम की हिमायत का मजहर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजों से लोगों के मूड की अक्कासी होती है और इससे ये इशारा मिलता है कि अवाम उनकी सरकार के कौमी प्रोग्रामों और पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। जनाब मोदी आज बेंगलुरु में बीजेपी कैडर से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने ऐसी सरकार की जरूरत उजागर की जो ठीक ढंग से काम करे, तेज रफ्तार के साथ अच्छी हुक्मरानी फराहम करे, मसाइल का हल निकाले और मुल्क को आगे ले जाए।
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर ख्वातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से

0: चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है।
1: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: मिस्टर मोदी ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट सोसाइटल पार्टिसिपेशन वॉज मोर पावरफुल दैन पोलिटिकल सिस्टम्स एंड वॉज एसेंशियल फॉर नेशन बिल्डिंग। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्च द ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑन मेंटल वेलबींग, रूरल डेवलपमेंट, नेचर कॉन्जर्वेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
2: भारत की जनता कह रही है कि हमें स्पीड चाहिए, हमें गेम नहीं सॉल्यूशंस चाहिए, हमें राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है।
1: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी

0: newsgov.in and News on AR app. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
2: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
2: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
1: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
2: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
1: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: सी जोसेफ विजय नान तमिलनाडु मुद्दी कवन முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடம்

0: வெளிச்சமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं. मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी. इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं. राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा. नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी. श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की.
2: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा. बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया. इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया. निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की. 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया. एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा. राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी.
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं.
3: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा. सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभात पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे. आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले. आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई. मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे. सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए. आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं. नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं. ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा. 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें. शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा. एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं.

0: आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडी विंस से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमेरिकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की टुकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर

बजकर 5 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद। सपहर 3:30 मारूफ शायर नगमा निगार कैफी आजमी के फनो शख्सियत के हवाले से उनकी बरसी के मौके पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनेंगे खामोश बगावतों का शायर, तहरीर डॉक्टर इकबाल रहमान की।

आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी, नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोजफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है।

शंघाई में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग बैन अलाक्वामी सेंटर में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने खिदमत, रूहानियत और सामाजिक कायापलट के फरोग में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के रोल को सराहा। जनाब मोदी ने माहौलियात से मुतालिक जिम्मेदारी नौजवानों को बाख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर भी जोर दिया। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि सियासी निजाम के मुकाबले समाजी शमूलियत ज्यादा बासर है और मुल्क की तामीर के लिए लाजमी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि मगरबी बंगाल, आसाम और पुदुचेरी में बीजेपी की कामयाबी उनकी सरकार की जानिब से नाफिज की गई कौमी पॉलिसी के लिए अवाम की हिमायत का मजर है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के नतीजों से लोगों के मूड की अक्कासी होती है और इससे ये इशारा भी मिलता है कि अवाम उनकी सरकार के कौमी प्रोग्रामों और पॉलिसियों की हिमायत कर रही है। जनाब मोदी आज बेंगलुरु में बीजेपी कैडर से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने ऐसी सरकार की जरूरत उजागर की जो ठीक ढंग से काम करे, तेज रफ्तार के साथ अच्छी हुक्मरानी फराहम करे, मसाइल का हल निकाले और मुल्क को आगे ले जाए। कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए वजीर आजम ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पार्लियामेंट में नारी वंदन संशोधन बिल के खिलाफ वोट देकर खवातीन को धोखा दिया है, जबकि इसमें पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन को यकीनी बनाने की बात कही गई थी। वजीर आजम ने लोगों से अपील की कि वो मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और अमरीका ईरान जंग जैसे जुग्राफियाई और सियासी हालात व वाकयात से पैदा चैलेंजों पर उबूर हासिल करने के लिए मुत्तहिद रहें। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी के बानी जोसेफ विजय को आज सुबह वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर ने नेहरू इंडोर स्टेडियम में एक तकरीब में उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमरा 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और तमिल फिल्म सनत से वाबस्ता कई सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। जनाब जोसेफ विजय ने तारीख रकम की है। हालिया असेंबली इंतखाबात में पहली बार चुनाव लड़ने वाली उनकी पार्टी टीवी के वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 1967 के बाद से वो रियासत के ऐसे पहले वजीर आला बने हैं जिनका ताल्लुक ना तो डीएमके से और न ही ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से है। जनाब जोसेफ विजय को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल की हिमायत के साथ 234 रुकनीय वार्ड में 120 अरकानी असेंबली की हिमायत हासिल है। लोक भवन के एक अखबारी बयान के मुताबिक गवर्नर मौसूफ ने वजीर आला जोसेफ विजय को हिदायत दी है कि वो बुध के रोज या उससे पहले असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने पर जोसेफ विजय को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम के रहन सहन को बेहतर बनाने की खातिर तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। वजीर आजम ने जनाब जोसेफ विजय के तई नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिस्सा नायके ने टीवी के पार्टी के सरबरा जोसेफ विजय को तमिलनाडु के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के फौरन बाद मुबारकबाद पेश की। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब दिस्सा नायके ने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु गुज़िश्ता कई नस्लों के जमाने से तारीख, सकाफत, इंटरप्राइजेस और अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों के जरिए मुंसलिक रहे हैं। उन्होंने भारत और श्रीलंका के दरमियान मजबूत साझेदारी को ये कहते हुए उजागर भी किया कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं और वसी इक्तिसादी इम्कानात और मौके भी सामने आ रहे हैं। असम में हिमंता बिस्वा सरमा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी के साथ साथ एनडीए कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग में मजमूई तौर पर पार्टी के 8 अरकान असेंबली ने डॉक्टर हेमंता बिस्वा सरमा का नाम तजवीज किया। वहां मौजूद दीगर अरकान असेंबली ने इसकी टाइप की। इसके बाद एजीपी और

0: सरकार ने असेंबली की मौजूदगी में असम गण परिषद के लीडर अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के रहनुमा रिहोन दे मादे ने एनडीए लीडर के तौर पर जनाब शर्मा का नाम तजवीज किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम में काले धन को जाय शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूची अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजीव अरोड़ा को कल चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया गया। इससे कबल 4 ठिकानों पर दिन भर की तलाशी की कार्रवाई की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सदर पुतिन ने यह भी कहा कि वो मुस्तकिल अमन समझौते को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद ही यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। नागालैंड हुकूमत ने रियासत भर में मोटर गाड़ियों पर मजहब पर मबनी किसी भी गैर सरकारी तंजीम एनजीओ से मुतालिक और दीगर गैर मजाज नारे स्टिकर्स और निशानदेही करने वाले निशानात लगाने पर पाबंदी नाफिज कर दी है। ये पाबंदी सभी निजी और सरकारी मोटर गाड़ियों पर लागू होगी। अलबत्ता मोटर गाड़ियों से मुतालिक कानून और जवाबित की शिकों के तहत खसूसी इजाजत हासिल करने वाली मोटर गाड़ियों को इससे छूट हासिल होगी। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत की जानिब से एक एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये हुक्म जारी किया गया है। मोटर गाड़ियों के मालिकान को हिदायत दी गई है कि वो इस नोटिफिकेशन के इजरा के 45 दिन के अंदर इस किस्म की सभी चीजें अपनी मोटर गाड़ियों से हटा दें। दीगर सूरत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने कल मियामी में कतर के वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी के साथ मीटिंग की और मगरबी एशिया महाजराई के तनाजुर में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग के दौरान दोनों फरीकों ने ईरान के साथ समझौते के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत की। इससे कबल कतर के वजीर आजम ने वाशिंगटन में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस के साथ तबादला ख्याल किया था। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट आउट के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा हासिल किया। 4 सेट के बाद मुकाबला टाई होने पर शूट आउट की नौबत आ गई। फैसला कुल मरहले में अपने हिसाब पर काबू रखते हुए भारतीय टीम ने चीन पर 5-4 से कामयाबी हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच अब से थोड़ी देर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। इधर रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस की टीमें आमने सामने होंगी। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाख्तियार बनाना कर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हल्फ लिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है और शंघाई में जारी तीरंदाजी वर्ल्ड कप में भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने शूट ऑफ में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में नगमा निगार कैफी आजमी के लिखे नगमे आपकी नजर करते हैं। आज कैफी आजमी साहब की बरसी है।

की फुल फिल्म का ही नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में एस डी बर्मन की थी मौसीकी। और इसे सुनिए शमा फिल्म की गजल सुमन कल्याणपुर की गई हुई कलाम कैफे आजमी का मौसीकी गुलाम मोहम्मद की।

कैफी आजमी को दीगर फिल्मों में भी कभी कभी गाने मिलने लगे। इस दौरान उनकी जिंदगी में शबाना के साथ साथ अहमद नाम के एक बेटे का भी इजाफा हो गया। यही अहमद बाद के दौर में बाबा आजमी के नाम से फिल्मी फोटोग्राफी के मैदान में बहुत कामयाब हुए। खैर, हम बता रहे थे कि 50 के दहे के इब्तदाई दौर में कैफी की आमदनी हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अपनी छोटी सी दुनिया समेटे यह खानदान एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहा था।

0: कैफी की पेशेवराना जिंदगी की इस पहली बड़ी कामयाबी के पीछे राज यह है कि इस गाने के लिए फिल्म में कोई सिचुएशन नहीं थी, बस बातों ही बातों में कैफी ने गाना सुनाया और सचिन देव ने इसकी धुन बना डाली। दोनों मिलकर ये गाना हारमोनियम पर गा रहे थे, तभी पीछे खामोशी से गुरुदत्त आकर खड़े हो गए। तीनों लोग इस गाने में इतना डूब गए कि एक दूसरे की मौजूदगी का भी एहसास न हुआ। गुरुदत्त को यह गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने फिल्म कागज के फूल में इस गाने के लिए सिचुएशन पैदा की और आज ये गाना एक यादगार गाना समझा जाता है।
1: लेकिन सितम जरीफी ये रही कि वक्त ने वाकई सितम ये ढाया कि फिल्म की नाकामी की वजह से गुरुदत्त डिप्रेशन का शिकार हो गए और कैफी को काम की तलाश में नए लोगों के पास जाना पड़ा। रमेश सहगल एक ऐसे फिल्म साज थे जिनके साथ कैफी ने पहले काम नहीं किया था। फिल्म थी शोला और शबनम। इस फिल्म का वो गाना जो रमेश सहगल को बहुत पसंद था, वो आज भी कई लोगों का पसंदीदा है।

इसके बाद एक के बाद एक और अपना हाथ जगन्नाथ जैसी फिल्में आई जिनमें कैफी के कई अच्छे गाने थे, लेकिन ये फिल्में भी तजारती कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इसी दौरान कैफी के गानों से आरास्ता फिल्म शमा आई जिसने अच्छा बिजनेस किया।

चेतन आनंद मदन मोहन और कैफी आजमी की टीम ने उस दौर के कामयाब तरीन गाने दिए जिनकी बाजगश्त आज भी हमारे जहनों में मौजूद है। फिल्म हंसते जख्म का ये नगमा रफी ने जिस शिद्दत एहसास के साथ गाया है वो अपनी मिसाल आप है।

चेतन आनंद के दिल में बरसों से एक ख्वाब था कि वो वारिस शाह के पंजाबी शाहकार को फिल्म के कालिब में ढाले। उन्होंने इस ख्वाहिश का तस्करा कैफी से किया। कैफी ने कहा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी ना किया गया हो। कैफी ने तजवीज पेश की कि ये पूरी फिल्म नज़्म में लिखी जाए। चुनांचे हिंदुस्तानी फिल्मों की तारीख में ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसमें शायरी के अलावा किसी और सिंह का एक जुमला भी नहीं है।

सखी ने इस फिल्म के लिए सिर्फ जबरदस्त गाने ही नहीं लिखे बल्कि पूरी की पूरी कहानी और तमाम तर मकाल में भी शेरों में लिखे। हालांकि राजकुमार और प्रिय राजवंश दोनों ही अदाकार अपने किरदार में मौजूद नहीं थे, लेकिन फिल्मी गानों और मकालमों की खूबसूरती के दम पर फिल्म चल गई।

0: ड्रामे भी लिखे। फिल्म गर्म हवा का स्क्रीन प्ले इसकी रोशन मिसाल है। खासतौर से फिल्म ही रांझा फिल्मों की तारीख का एक संगे में कही जाती रहेगी। कैफी ने श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन के और एम एस सतयू की कई फिल्मों के मुकालमे भी लिखे। 1995 में सईद मिर्जा की फिल्म नसीम में कैफी ने फिल्म का मरकजी रोल भी निभाया।
1: कैफी आजमी ने अवामी जिंदगी की इब्तदा हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान एक नौजवान मुजाहिद आजादी के तौर पर की थी। सारी जिंदगी वो गरीबों, कमजोरों और इस्तेहसाल के शिकार मजलूमों के हक में जद्दोजहद करते रहे। 10 मई सन 2002 को अपनी इस मुसलसल जद्दोजहद की 83 बहारें खजाएं देखने के बाद कैफी आजमी इस दुनिया

पुरानी फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे। परवीन सुल्ताना, मीरू पुरुषोत्तम और साथियों की आवाजों में कैफी आजमी का लिखा हुआ मौसीकी जयदेव की थी। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में इस प्रोग्राम की अगली।

0: के जीएसटी धोखाधड़ी केस में पंजाब के वजीर सनत संजीव अरोड़ा को 7 दिन के लिए ईडी की तहवील में भेज दिया गया है। गुरुग्राम ने काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक पीएमएलए की एक खसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये कार्रवाई की है। नागालैंड हुकूमत ने रियासत भर में मोटर गाड़ियों पर मजहब पर मबनी किसी भी गैर सरकारी तंजीम एनजीओ से मुतालिक और दीगर गैर मजाज नारे स्टिकर्स और निशानदेही करने वाले निशानात लगाने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी सभी निजी और सरकारी मोटर गाड़ियों पर लागू होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि मगरबी एशिया में भी कशीदगी जल्द दूर हो जाएगी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तंबीह भी की है कि अगर टकराव में इजाफा होता है तो सभी फरीकों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सदर पुतिन ने ये भी कहा कि वो मुस्तकिल अमन समझौते को हतमी शक्ल दिए जाने के बाद ही यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। 4 सेट के बाद मुकाबला टाई होने पर शूट ऑफ की नौबत आ गई। फैसला कुन मरहले में अपने आसाब पर काबू रखते हुए भारतीय टीम ने चीन पर 5-4 से कामयाबी हासिल की। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माहौलियाती जिम्मेदारी नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर और दाखिली बहबूद के जरिए एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की खातिर इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। तमिलनाडु में जोसेफ विजय ने चेन्नई में वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 9 वजीरों को भी हलफ दिलाया गया। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा को इत्तेफाक राय से बीजेपी कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ लड़ाई अनकरीब खत्म हो सकती है। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप में चीन के शहर शंघाई में जारी तीरंदाजी के आलमी कप के दूसरे मरहले में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम महोद पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन की रिकर्व टीम ने आज एक ड्रामाई शूट ऑफ के बाद मेजबान चीन को शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती है। शब के 9:15 पर आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: سامعین ابھی تک آپ آکاش وانی دہلی سے نیشنل نیوز سروس کی اردو سروس کے پروگرام سماعت کر رہے تھے۔ میڈیا میں پر یہ آکاش وانی کرگل کی آواز ہے۔ سامعین آپ سے لے کر رات کے 10 بجے تک آپ ہمارے نشریات میڈیا میں 1584 کلو ہرز، میڈیا میں 684 کلو ہرز، ایف ایم 101 MHz اور موبائل ایپس نیوز زون اے آر پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیا میں توچکنا غبگینا یشوش بینش بی کلو ہرس، میڈیا میں ٹوگینا یشوش بینش بی کلو ہرس، ایف ایم 11.1 MHz یا موبائل ایپس نیوز زون اے آئی آر کا گچس آکاش وانی کرگلی کا نظر نیوت درنگ یقپو ادیت مائل زیش ٹو درنگ پرچوپوت پی پروگرام ان کھرے گچایا ینتی دون اولیب سید گچی جونا سلام پو فرد مچن سونشک سخبا سخن اللہ دعایا پروگرام صداق اللہ گزوگ بیت دی پروگرامی رقصے کا ین وزر سخم قرآنی تلاوت نہ ترجمہ ملکان پن شیخ محمد عبداللہ۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

सोशल मीडिया अगरचे मुफीद है लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नौ उम्रों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारने से कीमती वक्त जाया होता है और पढ़ाई मुतासर होती है। मुसलसल मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से तवज्जो कम हो जाती है और इम्तिहानी कारकर्दगी गिर जाती है। रात देर तक स्क्रीन देखने से नींद पूरी नहीं होती, जिससे जिस्मानी और जहनी थकन पैदा होती है। आँखों में दर्द, सर दर्द और सुस्ती जैसे मसाइल आम हो जाती है। दूसरों की ज़िंदगी से अपना मुआज़ना करने से एहसास कमतरी, ज़हनी दबाव और डिप्रेशन पैदा हो सकता है। इसके अलावा गैर अख़लाक़ी मवारिद, गलत मालूमात और साइबर बुलिंग नौ उम्रों के सोच और शख्सियत पर मनफी असर डालती है। ज़ाती मालूमात शेयर करने से प्राइवेसी को भी ख़तरा लाहक होता है। सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल खान

0: ईमानदार और हकीकी दोस्तों से दूरी का सबब बन जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल महदूद और महतत अंदाज में किया जाए। शुक्रिया।
1: बख्शिश नमो नमस नाची वजह से सोशल मीडिया इसको लजे सबो दक्षिण आता मतलब सुन चाहिए ना तां चिमी नची भी नहीं हो दक्षिण गांव में मोबाइल के दक्षिण में रहते थे स्नान लजे ना कि अति यार कुन वक्स इन्ना या का तुक जाक्स इन्ना का तो सक लोग से या हदीश इन्ना या जगम शिन्ना या अति का तुक मसाइल जो ना का तो आता आदि कस्बे आता मजम भाबू अति ना जंजो सिन्ना सिन्ना दक्षिण ची बात ना अति ना मोबाइल चितों से ना सु एक्रो सु देक्रो दक्षिण आता जंजो सुना सुस पर मिच हते में ना ची दक्षिण यानी अगर का तो आते दी सोशल मीडिया यानी मोबाइल जन का तो आता ना मना लेक्सिना अगर फायदेमंद हा मैं नची अगर नते तेमो बसे तो स्टूल पर कतो शेष न कतो अगर कतो स्टूल पर मैं शेष न कतो आता है चुक्स बसे यानी चुक्पे क्या आधा चिक चामेल सब बुचा ना आते आती सोशल मीडिया आते स्टार से समसे आता यानी इंग्लिश में ठीक पों आता कॉल भी आता है जो ठीक है सब ना आते दी मोबाइल पो कुलचा है ना अंगेल जो स्पेलिया नमे गुड पबू नमे में दखला
2: फातिमा
1: कौसर नमे सम क्लास बाद एट क्लास या नमे चले चुके ना तीन खाना चपे नेहजुल बाला गए इसको नया बिस्मिल्लाह
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुतबात में से चंद खुतबात पेश करना चाहती हूँ। तंज़िलुल मऊनत अला क़दरिल मऊना, जितना खर्च हुआ उतनी ही इमदाद मिलती है। अलमरउ मखबूउन तहत लिसानी, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। फ़ाइलुल खैरि खैरुम मिन व फ़ाइलुल शर्रि शर्रुम मिन, नेक काम करने वाले खुद इस काम से बेहतर और बुराई का मर्तकब होने वाले खुद इस बुराई से बदतर है। अल्फ़क़रुल मऊनतुल अकबर, फ़कीरी सबसे बड़ा मौत है। अफ़ज़लुल अमल मा उकरिहुन्ता नफ़्सक अलैह, बेहतरीन अमल वो है जिसके बजा लाने पर तुम्हें अपने नफ्स को मजबूर करना पड़े। शुक्रिया।
1: مخصوص نمان نماز و پان نجل بلاغ اسکول زیز نجل بلاغ یا میزت علی خود پان نمان زیز چنا نمید نماز پر یعن نمید گد پبو نمید نمید تخصلا
2: شازیا
1: نمید سم کنا سیل بار
2: سبن
1: کلاس یا نمید چلی بچیگ نتیگ این کنا چاق بی
2: بس ارتفیشل انتلیجنس بار
1: بازا نمید یا مان
2: بسم الله الرحمن الرحیم Artificial intelligence, commonly known as AI, it is a branch of computer science that deals with making machines smart. It enables computer and machines to think, learn, and make decisions like human beings. AI system can understand information, solve problems, and improve their performance with experience. AI works using data algorithms and machine learning. Machines are trained with large amount of data so they can recognize pattern and give accurate results. For example, when we use voice assistant like Google Assistant, Siri, and Alexa, they understand our voice and answer our question using AI. Artificial intelligence is used in many fields today. In education, AI helps students learn through smart apps and online classes. In healthcare, AI helps doctors detect diseases and analyze medical reports. In transport, self-driver cars and traffic control system using AI to improve safety. AI is also used in banking, agriculture, security, and social media. There are many advantages of AI. It can make work faster, more, and agriculturally and without getting tight. AI reduces human effort and saves time. However, AI also has some disadvantage in many reduced job opportunities, cannot think emotional like human, therefore AI should be used carefully and responsibly. In conclusion, artificial intelligence is a powerful technology that is changing the world. It is probably its use can make human life easier, safer, and better in future. Thank
1: you. نمایدی من تخلا
2: حتما
1: نیسا یعن تشلیب چید نتیم یعن کنن چاپی
2: قوالی
1: بسم الله
3: الرحمن الرحیم

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल

0: अलावा नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. The event held at the Hyderabad International Convention Centre was attended by Telangana Governor Shri Pratap Shukla, Chief Minister A. Revanth Reddy, Union Minister G. Kishan Reddy and other senior leaders. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is need of the hour.
2: Energy security ka kya mahatv hai, ye aaj duniya ka har vyakti mehsoos kar raha hai. Isliye Bharat ki energy security par hamari Kendra Sarkar abhutpurv nivesh kar rahi. Malkapur mein Indian Oil ke naye terminal ka udghatan isi disha mein ek bada kadam hai. Bitte saalon mein solar power ke mamle mein Bharat duniya ke top deshon mein pahunch gaya hai. सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Among the major projects unveiled include PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. Built at an estimated cost of around 1700 crore rupees, it is the country's first fully operational PM Mitra Park and is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Center. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation. The Prime Minister also called for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with 6 BJP leaders.

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आपकी चाय।
2: अरे यार ये भाई किराया दवाई कैसे इंतजाम करूं?
3: एक तरीका है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
3: अपने बैंक की तफसीलात दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना आसान?
1: अरे काहे का आसान, ये मनी म्यूल है, दूसरे के अकाउंट से गैर कानूनी पैसा मुंतकिल करते हैं, जुर्म है, जेल हो सकती है।
2: ना यार ना, मुझे जेल नहीं जाना है।
1: अपने बैंक अकाउंट को महफूज रखें, किसी को इस्तेमाल ना करने दें। RBI कहता है
4: जानकार बने चौकन्ने रहे।

0: ए बुद्धू, नई कार जीतने का मौका?
1: वाव, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी तफसील भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
0: क्या?
3: ऐसे पॉपअप से होशियार रहो, स्कैमर्स।

0: तफसीलात का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: ओ, तू समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कर पाते।
0: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
2: कूल रहो।

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya faili thogikain akashwani stanchain customer un sapilepi scaps mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242। सुनो ना,
1: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242।
3: میڈیو میں کا دیو آکاش وانی کرگلین وقت پتو سو ٹکنے منٹ چوکا چندو کسا تھا پرگی غزر رنگن مزد

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: Instagram.
1: Drug smuggling जरूरी तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।

0: एजुकेशन दे रहे हैं। अब अगर एक बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद, डिग्री हासिल करने के बावजूद, उसे जो लाइफ की बेसिक नीड्स है अपनी, वही नहीं पूरी करनी आती है, क्योंकि हमने जोड़ रखा है उसको सिर्फ रोजगार से, और हम सोचते हैं कि एक डिग्री देके, कागज का टुकड़ा देके हम उसको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिठा देंगे, वहां पे वो पास कर जाएगा और कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल जाएगी। इस नजरिए को तब्दील करके हमें उसे रियल लाइफ के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है।
1: आज मदर्स डे यानी योम मादर है। ये दिन हर साल मई की दूसरी इतवार को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में माओं की शफकत और उनकी कुर्बानियों के एतराफ में उनके तई स्पास गुजारी का इजहार करने का एक मौका है।

जय हिंद फौजीबाइयों। फौजीबाइयों का प्रोग्राम सुनने वाले तमाम सामिन को मेरा प्यार भरा अदाब। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में शोला और शबनम फिल्म से गीत सुनते हैं, जिसे गाए हैं शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। गीतकार हैं अनजान और संगीतकार हैं बप्पी लहरी।

लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला नगमा मुस्कान फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुनते हैं समीर की लिखी इस गीत को। संगीत से सवारा है निखिल विनय ने।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों को फिल्म बरसात से। लीजिए दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा नगीना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है।

0: निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर

0: डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं जयपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया।

गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 1700 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी। भारत के तारीखी इम्तियाज को एक आलमी इक्तिसादी ताकत के तौर पर याद करते हुए, जब कपड़े की सनतें यकसर तब्दीली लाने वाला रोल अदा करती थीं, वजीर आजम ने मौजूदा इकदाम के जरिए इस अहम शोबे को नई जिला बख्शने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया।
1: आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहाँ हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में मुमकिन सैलाब और शदीद गर्मी की सूरत हाल से निमटने की तदाबीर के तौर पर एक जायजा मीटिंग की। नई दिल्ली में आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब शाह ने मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की इन हालात से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा पेशगी वार्निंग सिस्टम, वसाइल की फराहमी और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसी भी जानी या माली नुकसान से मुअस्सर तौर पर निपटा जा सके। वजीर मौसूफ ने मुल्क भर में तवील मुद्दती सैलाब का भी जायजा लिया, जिसमें अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का तहफ्फुज़, दरिया के इंतजाम के इकदाम और पेशगोई में साइंसी पेशरफ्त शामिल हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि आईन और अदलिया ने भारतीय जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा किया है। जनाब शाह आज शाम नई दिल्ली में दो किताबों के इजरा के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये किताबें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तसनीफ की हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि आम आदमी के यकीन, समाज की कारकर्दगी और मुल्क के किरदार का इजहार इंसाफ के एक मजबूत निजाम से होता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने एक समाज के तौर पर अपने इदारों में लोगों का एतमाद कामयाबी के साथ बरकरार रखा है। वजीर दाखिला ने कहा कि पूरे मुल्क के अवाम का ये यकीन है कि अगर कोई नाइंसाफी होती है तो आईन मौजूद है, अगर हुकूक पर कोई हमला होता है तो अदलिया के दरवाजे खुले हैं, और अगर किसी कमजोर शख्स की आवाज दबाई जाती है तो अदालतें इनकी आवाजों को यकीनन सुनेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी काबीना में 6 मजीद वजरा को शामिल किया। इसके अलावा 2 वज़राए मुमलिकत को तरक्की देकर उन्हें भी काबीनी वजीर आजादाना चार्ज का ओहदा तफवीज किया गया है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जनभवन लखनऊ में आज नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। इन नए वज़रा की शमूलियत से 403 रुकनी उत्तर प्रदेश असेंबली में वज़रा की तादाद 60 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत में आज होने वाली काबीना की इंतहाई मुतवक्के दूसरी तौसी में पार्टी के साबिक रियासती सदर चौधरी भूपेंद्र सिंह और मनोज पांडे को काबीना वजीर बनाया गया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही फतेहपुर में जिले के खागा असेंबली हलके की नुमाइंदगी करने वाले कृष्ण पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से बीजेपी एमएलए कैलाश सिंह राजपूत और अलीगढ़ की खैर असेंबली सीट से एमएलए सुरेंद्र दिलेर को वजीर मम्लकत बनाया गया है। कानून साज काउंसिल के रुकन हंसराज विश्वकर्मा को भी वजीर मम्लकत बनाया गया है। इसके अलावा वजीर मम्लकत अजीत पाल सिंह और सोमेंद्र तोमर को तरक्की देते हुए दोनों वजरा को आजादाना चार्ज तफवीज किया गया है। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पानी का तहफ्फुज एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी के जरिए विदर्भ के किसानों में खुदकुशी के वाकयात को रोका जा सकता है, निज इलाके के गांवों को पानी की मुसर फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। जनाब गडकरी ने विदर्भ खित्ते में पानी के तहफ्फुज के लिए सरगर्म तंजीम पूर्ति सिंचल समृद्धि कल्याणकारी संस्था की जानिब से नागपुर में सिल्वर जुबली तकरीबात के सिलसिले में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज योम मादर के मौके पर मुंबई में माओं की गजाइयत की किट्स तकसीम की। जनाब गोयल ने इस्तेमा से खिताब करते हुए कहा कि खसूसी तौर पर तैयार की गई इन किट्स को हमल के आखिरी मरहलों में खवातीन की गजाई जरूरतों और नौमौलूद बच्चों की जरूरतों को जहन में रखकर तैयार किया गया है। महाराष्ट्र की रियासती खवातीन कमीशन की साबिक चेयरपर्सन रूपाली चकनाकर से खसूसी तहकीकाती टीम ने नासिक में खुद साख्ता बाबा अशोक खराज से मुबैना ताल्लुक के मामले में पूछताछ की। अशोक खराज के जरिए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात और उसके सियासी रवाबित के ताल्लुक से छानबीन के लिए यह खसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई थी। IPS अफसर तेजस्वी सतपुते की क्यादत वाली SIT ने

नासिक में वाकई महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी में आज से तहकीकात का आगाज किया। भारत और ट्रिनिडाड और टोबैगो ने सेहत, सियाहत, हिफ्जान सेहत, बुनियादी ढांचे और आयुर्वेद समेत मुख्तलिफ शोबों में 8 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। ये दस्तखत वजीर खारजा एस जयशंकर के करेबियाई मुल्कों के दो रोजा दौरे के दौरान किए गए। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत नामों पर यह दस्तखत ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की वजारत खारजा और कैरिकॉम उमूर की इमारत को शमसी तवानाई से लेस करने, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर काबू पाने, नेल्सन जजीरे के बुनियादी ढांचे की तस्दीद करने के मकसद से किए गए। डॉक्टर जयशंकर का यह दौरा कल मुकम्मल हो गया। उन्होंने अपने इस दौरे में वजीर आजम कमला प्रसाद विशेसर और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत दो तरफा तआवुन को तौसी देने से मुतल्लिक मीटिंग में पिछले साल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में किए गए ऐलानात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में एक पुलिस चौकी को निशाना बनाकर किए गए खुदकुश हमले में 15 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि मुतअद्दी जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हमला कल उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी एहलकारों ने पुलिस चौकी की तरफ बढ़ते हुए धमाका खेज मादे से लदे ट्रक पर फायरिंग की जिसके नतीजे में धमाका हुआ। धमाके के बाद कई बंदूक बरदारों ने पुलिस चौकी पर हमला किया जिसके नतीजे में शदीद गोलीबारी हुई। इस शदीद बम धमाके में पुलिस चौकी तबाह हो गई और कई सिक्योरिटी एहलकार मलबे में दब गए। आज बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने एक वकील के मुबैना कत्ल केस में सनातनी जागरण ज्योत के तर्जमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने जमानत की दिगर 4 दरखास्तों पर अपने अहकामात महफूज रखे हैं। इस केस का ताल्लुक 2024 में चट्टग्राम अदालत के अहाते में पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान एक वकील सैफुल इस्लाम की हलाकत से है जब चिन्मय पुलिस हिरासत में थे। ईरान ने मगरबी एशिया में जंग खत्म करने के मकसद से अमरीका की ताजा तरीन तजवीज पर अपना जवाब बाकायदा तौर पर दाखिल कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि इस जवाब में कहा गया है कि इस मरहले के मुजाकिरात में खित्ते में तनाजे को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। यह बयान ऐसे वक्त दिया गया है जब अमरीका के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और वजीर खारजा मार्को रूबियो जंग खत्म करने पर बातचीत के लिए कतर के वजीर आजम से मुलाकात की है। रूस ने यूक्रेन पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमरीका की सालिसी वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है जबकि यूक्रेन के अफसरान ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में रूसी हमलों में एक शख्स हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। इसी दौरान रूस की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया है कि कीव ने जंगबंदी की 1000 मरतबा से ज्यादा खिलाफ वर्जी की जिसमें शहरी इलाकों और सरहदी चौकियों पर हमले भी शामिल हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के प्रभास पाटन में वाक है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। यह अपनी तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल कर रहा है। इसकी मुनासिबत से सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में होने वाली तकरीबात में शिरकत करेंगे और एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव कल 2 चीतों को कोनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2022 में नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। यह दुनिया का पहला बैन बर आजमी बिग कैट मुंतकली का प्रोजेक्ट था। मिजोरम में कावरथा शुमाली गांव कौंसिल ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के साफ सुथरी और माहौल के लिए साजगार पंचायत के जुमरे के तहत कौमी सतह पर आला तरीन मकाम हासिल किया है। कौंसिल को यह मकाम मुसलसल देही तरक्की माहौलियात के तहफुज के लिए उसके काम पर दिया गया है। निशानेबाजी में भारतीय जोड़ी नीरू धांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। इसी के साथ भारत ने आज कजाकिस्तान के अल्माटी में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में अपनी मुहिम मुस्बत कारकर्दगी के साथ खत्म की है। नीरू और विवान के लिए किसी ओलंपिक मुकाबले में पहला ISSF वर्ल्ड कप पोडियम फिनिश था और गुज़िश्ता साल ओलंपिक में शामिल किए गए मिक्स टीम ट्रैप के बाद अब तक भारत का यह दूसरा तमगा है। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले जा रहे मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के सामने जीत के लिए 167 रन का निशाना रखा है। इससे कबल रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिन के दूसरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 ओवर्स और 2 गेंदों में लखनऊ सुपर जायंट्स के जरिए दिए गए 204 रन के निशाने को हासिल कर लिया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया जिनकी लागत तकरीबन 9400 करोड़ रुपए है।